तो क्या तुर्की मैदान जंग में मसनू जहानत का इस्तेमाल कर सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले, जिसके बारे में हम सब मुतजस हैं, ओजबिलन बताते हैं कि तुर्की की दिफाई सनत में तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स वगैरह और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के पास मौजूद सेंसर नेटवर्क्स एक बहुत ही अहम बुनियाद फराहम करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसके बाद का असल नाजुक मामला कुछ और है, और अपनी बात को यूं मुकम्मल करते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी चीज जम करना है। इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर करना जरूरी है कि इनफरादी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सेंसर्स को किनारों और मरकज दोनों जगहों पर मस्नूई जहानत पर मबनी तज्जिया और फैसला साजी की तहों के साथ कितनी तेजी से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मुस्तकबिल के मैदान जंग में फायदा सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की तादाद और उनकी इकसाम से नहीं होगा, बल्कि असल बात यह होगी कि उन प्लेटफॉर्म से आने वाले डेटा को कौन ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी से समझकर फैसले में तब्दील कर सकेगा। इस सवाल का जवाब हमें यह भी बताएगा कि नए दौर में कौन से ममालिक सबसे आगे होंगे। मैदान जंग में मस्नूई जहानत का किरदार तेजी से बदल रहा है, और ये वाजह है कि जो लोग इस तब्दीली को सही तरीके से समझेंगे, मुस्तकबिल में फायदा उन्हीं का होगा। एक और पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: दाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही है।
1: वेंजुएला ने कहा है कि सियासी मुंतकली पर मुजाकरात अगले हफ्ते काराकास में शुरू हो जाएंगे। वेंजुएला की हुकूमत और अपोजिशन ने ऐलान किया है कि मुश्तरका वर्किंग एजेंडे पर इत्तफाक होने के बाद सियासी इंतकाल इक्तदार से मुतल्लिक बिलमशाफा मुजाकरात आइंदा हफ्ते दारुल हुकूमत काराकास में शुरू होंगे। कौमी असम्बली के सदर और हुकूमत के चीफ मुजाकरातकार खोर्खे रोड्रिगस ने अपोजिशन रहनुमा देनोर एफिगेरा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद कहा है कि हमने आइंदा हफ्ते काराकास में पहली बिल मुशाफा मुलाकात के इनाकात पर इत्तफाक कर लिया है। 2015 में पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने वाली ओपोजिशन इतिहाद की रहनुमा देनोर एफिगेरा ने भी अपने बयान में टेलीफोन गुफ्तगू और इस पर तय पाने वाले मुश्तरका एजेंडे की तस्दीक की है। पेरू में सियाहों को ले जाने वाला तैयारा नाजाका शहर के जवार में गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस मेजर जॉर्जे आंद्रादे ने हफ्ते के रोज मुल्क के जनूबी हिस्से में जाए हादसा पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि हमारी मालूमात के मुताबिक 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान हलाक हो गए हैं। नाजका बलदिया ने फेसबुक पर जारी करदा बयान में कहा है कि यह तैयारा सयाहों को नास्का लाइंस के फजाई नज़ारे के लिए ले जा रहा था। ये वसी जोग्राफियाई नकोश सदियों पहले पेरो के मुकामी बाशिंदों ने नास्का के इर्द गिर्द सहरा में बनाए थे। जानवरों की शक्लों पर मुश्तमिल ये नकोश मुकम्मल तौर पर सिर्फ हवाई जहाज से या मखसूस मुशाहिदाती टावरों से ही देखे जा सकते हैं। नास्का बलदिया के मुताबिक तैयारा करीबी शहर एक्का से रवाना हुआ था और इसे पेरो की फजाई कंपनी एरो डायाना चला रही थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो गुज़श्ता 14 बरसों से सेस्ना ग्रैंड कैरावान तैयारों के जरिए नास्का लाइंस के ऊपर सियाहती परवाजें करवा रही है। पेरो के हकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन एरो डायाना ने अब तक इस वाकये पर कोई बयान जारी नहीं किया। जापान के जनूब मगरबी सूबे कुमामोतो में गुज़श्ता हफ्ते आने वाले शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है और हजारों अफराद अब भी इमदादी पनाहगाहों में मुकीम हैं। सरकारी नशरियाती इदारे NHA की आज परोस इतवार नशर करदा खबर के मुताबिक हुकाम ने 36 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। मजीद 2 अफराद की मौत के बारे में तहकीकात जारी है ताकि मालूम किया जा सके आया इनकी हलाकत गुज़श्ता मंगल को होने वाले 7.1 शिद्दत के जलजिले के बायस हुई है या नहीं। जलजिले से 3,400 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 9,200 अफराद 210 इमदादी मराकज में पनाह लिए हुए हैं। कुमामोतो में 69,000 से ज्यादा घरों और कारोबारी मराकज को अभी पीने के साफ पानी की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। जलजिले से मुतासरा तिब्बी मराकज में भी मामूल की खिदमात की बहाली के लिए काम जारी है। दूसरी जानब कुमामोतो के बाद इलाकों में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर जाने के बायस लू लगने के शुबे में तकरीबन 30 अफराद को हफ्ते के रोज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ह रहे कि जापान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां जलजिले सबसे ज्यादा आते हैं। ये मुल्क बहरुल काहल के रिंग ऑफ फायर यानी आतशी हल्के पर वाक़े है और दुनिया भर में 6 या इससे ज्यादा शिद्दत के तकरीबन 20% जलजिले जापान में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुईं।

सामिन, एक बंदरगाह का क्या फ़ायदा होता है? जहाज़ आते हैं जाते हैं, सामान उतारा जाता है, ड्रम कतारों में रखे जाते हैं और खाते बंद कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बंदरगाह महज तिजारत का एक आम पड़ाव होती है, लेकिन कुछ बंदरगाहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मालो असबाब ही नहीं बल्कि इंसानियत का मुश्तरक हाफजा भी मुंतकिल करती हैं। उनकी लहरें सिर्फ जहाज़ों को ही नहीं बल्कि तारीख के धारे को भी रास्ता दिखाती हैं। आज हम अपना रुख बाहर रूम की नमकीन हवा की तरफ कर रहे हैं। हम एक ऐसे मगरूर साहिल की तरफ जा रहे हैं जिसने हज़ारों सालों से अजीम सल्तनतों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और जो मशरक़ी बाहर रूम के अहम तरीन रास्तों में से एक रहा है, गजा की तरफ। आज टेलीविज़न की स्क्रीनों पर अक्सर सिर्फ जंग, मुहासरे और तबाही के हवाले से याद किया जाने वाला ये शहर दर हकीकत इंसानी तारीख के कदीम तरीन, गहरे तरीन और अमीर तरीन तजारती मराकज़ में से एक है। आइए आज की धुंध को थोड़ा सा छांटते हैं और गजा की 5000 साल कहानी का दरवाज़ा मिलकर खोलते हैं। अब हम अपने जहन में एक नक्शा बनाते हैं। एक तरफ मिस्र की कदीम सरजमीन, दूसरी तरफ अरब और मेसोपोटामिया, शुमाल में शाम, अनातोलिया और बहरा रूम के रास्ते यूरोप। इन्हीं तमाम रास्तों के गठजोड़ पर मुश्तमिल इस तंग साहिली पट्टी पर एक ही शहर उभरता है, गजा। गजा सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं था। यह कदीम दुनिया के अहम तरीन ज़मीनी तिजारती रास्तों में से एक, विया मारिस यानी समंदरी रास्ते का सबसे अहम स्ट्रेटजिक पड़ाव था। मिस्र से शुरू होने वाला यह कदीम रास्ता गजा से होता हुआ शाम, अनातोलिया और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इसीलिए इस शहर की ना सिर्फ बंदरगाह बल्कि उसके रास्ते भी कभी खाली नहीं रहे। जोग्राफिया ने गजा को एक ऐसा मकाम दिया था कि जो ताकत उस पर कंट्रोल हासिल करती वो मशरक और मगरब के दरमियान तजारत के अहम तरीन चौराहे को भी कंट्रोल करती थी। यही वजह है कि तारीख में कई रियासतें और सल्तनतें इस शहर पर कब्जा करना चाहती थीं। अब हम वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाते हैं। मिस्री फिरौन एशिया की तरफ अपनी मुहिमात में गजा को सिर्फ एक पड़ाव के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कबल अज़ मसीह 15वीं सदी में हुकूमत करने वाले थटमोस सोम की फौजी मुहिमात के रिकॉर्ड्स और अमरनाथ खतूत में गजा एशिया में मिस्र के अहम तरीन इंतजामी और फौजी मराकज़ में से एक के तौर पर सामने आता है। सहराओं की चिलचिलाती गर्मी को पीछे छोड़ने वाली फौजें पहली बार यहीं बहरा रूम की ठंडी हवा से मिलती थीं। गजा सिर्फ एक सरहदी किला नहीं था बल्कि मशरक़ की तरफ खुलने वाले मिस्र के दरवाज़ों में से भी एक था। लेकिन गजा को जिस चीज़ ने असल में नाकाबिल फरामोश बनाया वो जंगों से ज़्यादा तिजारत थी। वो लोबान का रास्ता जिसका जिक्र तारीख की किताबों में अक्सर मिलता है, जुनूबी अरब के तपते हुए सहराओं से निकलने वाले सैकड़ों ऊँटों के काफ़िले हफ्तों और बसा औकात महीनों के सफ़र के बाद जिस पहली बड़ी बहर रूम की बंदरगाह पर पहुँचते थे वो गजा ही था। इन काफ़िलों का सामान आम नहीं होता था। मुकदस मरमकी, लुबान की गोंद, कीमती धुनिया, हिंदुस्तान से आने वाली दारचीनी, काली मिर्च और कीमती पत्थर, सहरा की खुशबू गजा की बंदरगाह पर बहरा रूम के नमक से मिलती थी। यहाँ से जहाज़ों पर लदा यह कीमती सामान इस्कंदरिया, एथेंस, रोम और बहरा रूम के कोने कोने की तरफ रवाना होता था और इस शहर की फितरत दुनिया को सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि एक और दौलत भी पेश कर रही थी। कदीम रोमन दौर के ज़राए और कुछ तारीखी रवायात में गजा के इर्द गिर्द के साहिली रेत के ज़र्रात को शीशा साजी में इस्तेमाल होने वाले आला मियार के सिलिका के ज़राए में शुमार किया जाता है। अगरचे कदीम शीशा साजी का वाहिद मरकज़ गजा नहीं था लेकिन यह खित्ता मशरक़ी बहरा रूम के अहम तरीन शीशा साजी और तजारती मराकज़ में से एक के तौर पर नुमाया रहा है। गजा उन शहरों में से एक था जो अपनी मिट्टी की रेत से भी निफासत पैदा करता था। अब ज़रा आराम से बैठ जाएं और अपनी आँखें बंद करें। हम ईसा

अपनी ज़िंदगी लहरों पर गुजारी है, इसी चौक में एक साथ खड़े हैं। गज़ा सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि ज़बानों, सकाफ़तों, अकायद और कहानियों के मिलाप का भी एक बहुत बड़ा आलमी चौराहा था। कौन कौन नहीं गुजरा इस शहर से? मिस्री, अशूरी, बाबुल के लोग, पारसी, सिकंदर आजम, रूमी और बाज़ंतीनी। बाद में इस्लामी फुतूहात के साथ ये शहर एक नए दौर में दाखिल हुआ। अमवी, अब्बासी, ममलूक और फिर तकरीबन 4 सदियों तक उस्मानी दौरे हुकूमत। सदियों के दौरान हुकूमतें बदलीं, नक्शे दोबारा बनाए गए, सल्तनतें उभरीं और मिट गईं, लेकिन गज़ा जिंदा रहा। ये कई बार तबाह हुआ और हर बार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज माहिरीन आसार कदीमा जब भी गज़ा की मिट्टी में खुदाई करते हैं तो लगता है जैसे तारीख का एक नया सफ़हा खोल रहे हैं। कांसी के दौर की बंदरगाह के आसार, रोमी दौर की सुतूनों वाली सड़कें, बाज़ंतीनी पिचकारी, मिट्टी के बर्तन और मकबरे। गज़ा अपनी मिट्टी के नीचे हज़ारों साल पुराना हाफिज़ा अब भी महफूज रखे हुए है और इस हाफजे की सबसे हैरत अंगेज निशानी उसके नाम में छुपी है। कबल अज़ मसीह 15वीं सदी के मिस्री रिकॉर्ड्स में इस शहर का नाम गज़ात मिलता है। अशूरिया की तख्तियों पर भी ये इसी तरह सामने आता है। आज अरबी में जो नाम हम गज़ा इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी जड़ से निकलता है। दुनिया में ऐसे शहर बहुत ही कम हैं जिनका नाम 5000 साल तक बड़ी हद तक इसी तरह बरकरार रहा है। आज जब गज़ा का नाम लिया जाता है तो शायद बहुत से लोगों के जहनों में सिर्फ तबाही, मुहासरा और दर्द ही उभरता हो। हालांकि ये कदीम शहर इंसानियत के मुश्तरक हाफजे का एक अहम तरीन पड़ाव है, एक ऐसा बहिरा रूम का दरवाज़ा जो हज़ारों साल तक जहाज उम्मीद के साथ लंगर अंदाज होते रहे, जिसकी हवाओं में मसालों की खुशबू रची बसी रही और जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, सकाफ़तें और इंसान आपस में मिलते रहे। माजी को जानना हाल को समझने की सबसे ताकतवर चाबियों में से एक है। कभी कभी किसी शहर को वाकई जानने के लिए सिर्फ आज के धुएं को नहीं बल्कि हजारों साल से समंदर की तरफ खुलने वाली उसकी कदीम बंदरगाह को देखना पड़ता है। लेकिन फलस्तीन की पोशीदा कहानियां सिर्फ बंदरगाहों पर ही नहीं लिखी गईं। कभी ये किसी सहराई गार की खामोशी में छुप गईं और कभी 2000 साल तक किसी हाथ के छुए बगैर पुराने तोमारों के दरमियान इंतजार करती रहीं। चुनांचे अगली किस्त में हम उन खामोश गारों का दरवाज़ा खोलेंगे जो हमें इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक की तरफ ले जाएंगी, बहरे मुर्दार के तुमार। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।